0: X ka FM ka wa wala ngwe mtene kuchu aunga programa ta asa wujiche ka ke radio kwe sire ko ang manite cha kan gu supa mo ka nga wala ngwe ten hoji ta ba go sa anji ma ka ya ta ka ba tu ka isi pa nga gu sire ka wa wala ngaji cha kwe ale ka program nga mtu tu kwe ngwa ka ya wala ngaji cha ngu sa go jiche ka ke radio ke ka ba tu ka isi pa nga gu sire ए वोला गजी चान तने गोइ मा थमगो मा सिरे गे मनी तेंग नै खन को छुपा हम मा गान गबा सेफ्टी के क्रेम हम को सगो जि से का के वोला नो को ना को सिरे का वर हेस ता तप हम तने ना सिरे के वोला दंग मो तने हो जि तबा के कनु से कवे तो खै से कोइ अली को प्रोग्राम हम तो तो कोइ मा का वोला गजी चा मेन मा का मा के कनु से को सिंग के खसुरिन का वचिन नउ तु लगे ना को गजी चिकांग हे मा से मुले खक खक थम को पंग बा को सिंग क्या खसिने अमन को सिंग गजी जिगा से छु न जिचा वो जिगे मे मा का मा मा को से को जिचे ता कनु से मा से दे गुंग को मु थम को से को जिगे पंग बा को सिंग के अमन को तर तर अमन हो वा वो जिगे मतन छो मा बा वोला गजी चा के मा उंग मा सु ता ता बा बा वोला न्यू ए तने को खुंग आ चिते बा को दे कनु जिचे आगु से दे के छु न के सेफ्टी को जिगे कने वो लु जिचे को से के मोंग मासो तें बिताउ मा ओलांग
1: वरमेजु जगा ओ मालुम
2: मुगा उनाइपो
1: पसे कोनो राउ टू येंडे लंडन अमेरिका जोबेक